0: लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासी वयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: सिर दर्द लकवा या रीढ़ की तकलीफ क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Do you wanna partner? Oh, partner, do you wanna partner?

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

아시가나? 아시가나 늘!

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। चार कदम बस चार कदम, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक शान की आवाज़ में भी आपने एंजॉय किया एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और हम आ गए हैं आपके पास, अब आपकी बारी है, आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाइए और हमसे कीजिए मुलाकात। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी, जो लेकर आती है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। वक्त हुआ है 10:03, 9 अगस्त की तारीख है, संडे का बहुत ही ब्यूटीफुल दिन। दोस्तों संडे सिर्फ आराम करने का दिन नहीं है, ये खुद से मिलने का दिन है और पूरे हफ्ते आपने सबका ख्याल रखा, राइट? आज थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए, जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखिए और जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। याद रखिए एवरीवन, हर सुबह एक नया मौका है और हर रविवार खुद को फिर से शुरू करने का खूबसूरत बहाना भी है। तो आज कोई शिकायत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस एक प्यारी सी स्माइल और दिल में कुछ विश्वास बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल सही हूँ और धीरे धीरे मैं वहाँ पहुँच रही हूँ या पहुँच रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। हैप्पी संडे ब्यूटीफुल सोल्स, एंड आज का दिन आपका है, इसे मुस्कुरा कर जिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा एवरीवन। और करेंगे बहुत सारी बातें आज, बहुत सारी अपडेट है जो आप तक शेयर करनी है और आज स्पेशल भी होने वाला है मेरा शो। क्या कुछ खास होगा वो सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप सभी को हैप्पी संडे और एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन ट्रैक, फिर करते हैं आपसे बातचीत। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन, अपना ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। ओहो अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, अरे वाह, बहुत सारे लोग तो जो लिसनर्स हैं हमारे वो अभी मंदिर से आए हैं क्योंकि आज एकादशी भी है और आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना और जिसका भी सब्री से इंतजार होता है, वो दिन भी आने वाला है, महाशिवरात्रि भी आने वाली है सावन की। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक लव यू जिंदगी। खुद से प्यार कीजिए, जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

क्या बात है दोस्तों, अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, लेकिन हमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं ना हम संडे टू संडे। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं, बहुत सारा फन हम करने वाले हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो बस आप यूं ही बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आरजी खुशी के साथ। और दोस्तों अभी मैं टाइम भी बता देती हूँ, 10:15 हो गए हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा यूं ही बनी रहे, आपकी लाइफ में हमेशा समृद्धि सुख हैप्पीनेस बरकरार रहे। आगे और मैंने कहा आपसे कि आप भी मेरे साथ आज की मॉर्निंग कनेक्ट हो सकते हैं, सुबह को और खास बना सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, छोटू सा काम करना है, जो आपको मोबाइल है ना, हाँ जी, जो आप इस वक्त चला रहे हैं, इसी पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896, इस नंबर पर ना आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग का मैसेज पहुंचाइए। एवरीवन क्या कर रहे हैं आज की सुबह बताओ मुझे। क्योंकि देखो एवरीवन, रेडियो पर आवाज मेरी हो सकती है लेकिन इस शो की असली रौनक तो आप सभी है ना। और हमारे लिसनर कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं देखिए। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बस मैं आती हूँ कुछ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर एंड उसकी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा। तो आप खूबसूरत मैसेज पहुंचा रहे हैं उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और चलिए सुबह सुबह संडे की शुरुआत ना हम कुछ मीठे के साथ करते हैं। अब कुछ मीठा तो मैं आपको नहीं खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ एक मीठा सा गाना है बहुत ही प्यारा सा, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ज्यादा, नो स्वीटनेस तो होनी चाहिए ना सुबह सुबह, कुछ मीठा मीठा। तो चलिए मीठा मीठा सा ट्रैक सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम मैं आपको बता देती हूँ, संडे मॉर्निंग मस्ती, थोड़ी सी संडे में मस्ती करने का दिन होता है, फैमिली के साथ एंजॉय करने का दिन होता है और जो पेंडिंग काम हमारे होते हैं उनको कंप्लीट करने का दिन होता है ना दोस्तों। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था ना कि लौट कर आने वाले हैं, तो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा खुशी के साथ। दोस्तों किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, किताबें महसूस की जाती हैं और जिंदगी में उतारी भी जाती हैं। आज 9 अगस्त है और आज का दिन खास है उन लोगों के लिए जिन्हें किताबों की खुशबू, पन्नों की सरसराहट और शब्दों की दुनिया से प्यार है, क्योंकि आज मनाया जाता है पुस्तक प्रेमी दिवस यानी बुक लवर्स डे। और ये एक औपचारिक दिवस है जिसका मकसद है लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना और कुछ वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से दूर रहकर किताबों के साथ बिताना। आज हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट किताब के नाम, क्योंकि कहानी पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, कोई उपन्यास या फिर अपनी पसंदीदा कोई भी ज्ञानवर्धक बुक जो आपकी फेवरेट है,

हैप्पी बुक लवर स्टीव रिवर। देखिए मैं भी किताबें पढ़ने की शौकीन हूँ एंड बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। और दोस्तों आज हमारे साथ हमारी डॉक्टर भी जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आपके आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। इतने प्यारे प्यारे मैसेज हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुरादाबाद, आप इतना प्यार देते हैं एफएम मुरादाबाद को और सभी प्रेजेंटर्स को, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम कैसे हैं आप, ये रोहित जी का मैसेज आया है न्यू मुरादाबाद से। रोहित जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ, कहते हैं कि मैम अभी हम बस मंदिर से पूजा कर आए हैं और आप ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह जी का, और ये कहते हैं कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए राम राम गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। विष्णु गिरी जी का हमारे पास मैसेज आया आज की मॉर्निंग एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया दुर्गीश सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से, कहते हैं आपको भी राधे राधे मैम, राधे राधे आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी जी कैसे हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी लाइन पार मुरादाबाद से। तो दोस्तों आप भी क्या कर रहे हो, जल्दी से मैसेज पहुँचाइए ना गुड मॉर्निंग का, हम इंतजार कर रहे हैं। ओहो आज की सुबह बहुत ज्यादा बिजी है आप, देखिए बिजी रहना जरूरी है लेकिन थोड़ा सा वक्त तो निकालो ना हमारे लिए। अरे वाह क्या बात है, सुनते ही आपने तो मैसेज करना शुरू कर दिए, धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, उसकी बात करेंगे आपसे, गुफ्तगू बातचीत और भी क्या कुछ स्पेशल है वो भी सब आपको पता लगेगा। ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है दोस्तों, सुबह सुबह इतना खूबसूरत गाना। ओ हो हो, संडे तो खूबसूरत बन ही गया है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आज की सुबह होने वाली है थोड़ी खास, क्योंकि आज 11 बजे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर वीरांग श्रीवास्तव जी, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आंखों से जुड़ी कोई जानकारी, कई ज़रूरी बातें होंगी। बच्चों का बढ़ता मोबाइल इस्तेमाल, स्क्रीनिंग टाइम, आंखों में जलन और सूखापन, नींद का आंखों पर असर, चश्मा कब लगना चाहिए और आंखों की नियमित जांच क्यों ज़रूरी है, इन सभी सवालों पर हम डॉक्टर वीरांग सर से खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की बातचीत सिर्फ मेरी और डॉक्टर सर की नहीं होने वाली है, इसमें आपके सवाल भी शामिल होंगे। अगर आपकी आंखों से जुड़ी कोई भी आपको परेशानी है, कोई सवाल है, या आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो अभी से अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। हो सकता है आपका भेजा हुआ सवाल आज डॉक्टर वीरांग सर से हम सीधा मालूम कर लें और बिल्कुल विशेषज्ञ से आपको आपका जवाब मिल जाए। तो तैयार रहिएगा सुबह 11 बजे हेल्थ टॉक में, स्वस्थ आंखें बेहतर जीवन, सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

आप ठीक सुनना ना भूलिएगा, 11 बजे हम लाइव आने वाले हैं डॉक्टर वीरांग सर के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है आंखों से जुड़ा हुआ, कोई अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं एंड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आपके यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं सभी के लिए, एंड सभी खूबसूरत मैसेजों के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद एवरीवन। और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत मैसेज आए हैं, विकी सागर जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज आया है आरजी खुशी जी को, नमस्ते गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। सीएल गुप्ता से सलीम अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं कासिम अलवी जी। खुशी जी हम आपका शो सुन रहे हैं, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अमित वर्मा जी का हेमगिरी मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी कैसी हैं आप, मैं इस समय पहाड़ों पर हूँ और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की एफएम मुरादाबाद भी सुन रहे हैं और सुनने वाले श्रोताओं को भी प्यार भरा नमस्कार। अमित वर्मा जी का मैसेज हमारे पास हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से आया है, धन्यवाद सर आप पहाड़ों पर भी जाकर रेडियो का आनंद ले रहे हैं, कितना खूबसूरत नजारा है ना वहाँ का, हल्की हल्की बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण, अरे वाह कमाल ही हो गया है सुबह सुबह, है ना जीवन। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है फिरोज अली जी का, हाय दी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम करने वाले बहुत सारी बातें आज, तो एवरीवन आप बस यूं ही बने रहिए मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अपने मैसेज भी पहुंचा दीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ?
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग मस्ती शो विद आरजे खुशी. एंड समय हुआ है 11 बज चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में. गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. क्या बात है, आज संडे की सुबह बड़ा सज सवर कर आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ओहो, आज घूमने का प्लान कर रहे हो? अरे वाह, क्या बात है. और बहुत सारे लिस्टनर्स हमारे अभी ऑन द वे कार में भी हैं, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं सफर पर जा रहे हैं. बड़े ही सोने लग रहे तुसी जी, बस आराम नाल गाड़ी चलाओ एंड सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा. अच्छा, मिरर में खुद को देख रहे हैं कि ओहो, खुशी मैम ने बोला है, अब देखना तो पड़ता है हम सच में खूबसूरत लग रहे हैं क्या. सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब. और दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको कि आज 9 अगस्त है और आज मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस. जी हाँ दोस्तों, ये बेहद खास है. आज मैं आपको बता रही हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, अधिकारों और उनके पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला किया था. ये तारीख इसलिए नहीं चुनी गई क्योंकि 1982 में 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी. हमारे आदिवासी समाज का प्रकृति से रिश्ता बेहद गहरा है रहा है. दोस्तों, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना और अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना इनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा रहा है. और दोस्तों, आदिवासी संस्कृति सिर्फ परंपराओं का नाम नहीं, ये हमारी लोक कला, लोकगीत, नृत्य, भाषा, पहनावे और प्रकृति से जुड़ना ज्ञान की खूबसूरत विरासत भी है. तो आज विश्व आदिवासी दिवस पर आइए हम सभी उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और प्रकृति के प्रति उनके संदेश से कुछ सीखें. और दोस्तों, आप सभी को एंड वंस अगेन विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी आदिवासी बहन भाइयों को.

और मैंने आपसे कहा था ना कि दोस्तों आज का शो हमारा स्पेशल होने वाला है, तो सब आपको पता लगेगा, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए आरजी खुशी को। और सुनते हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे और भी ज्यादा यू नो हैपनिंग, क्योंकि मुझे लगता है सुबह की शुरुआत हमेशा ना हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करते हैं ना तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। और मुझे पता है कि सुबह सुबह आप सब मंदिर से आ गए, स्नान करके मंदिर से पूजा पाठ कर आ गए हैं और अभी बैठकर हमारा शो सुन रहे हैं, कुछ अभी नाश्ता बना रहे हैं तो कुछ अभी कामों में व्यस्त हैं, और बहुत सारे आज हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस समय उनका व्रत भी हुआ क्योंकि आज कामिका एकादशी है। एंड वंस अगेन आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपसे बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है 11:18 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। खुशी लेकर आई आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। और देखिए दोस्तों, संडे अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, लेकिन हम आपको आपके संडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने आ गए हैं। और दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो बाढ़ की मुश्किलों के बीच इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश करती है। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समीर रैना ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 10 लाख रुपए दान किए। बताया गया है कि ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के काम में मदद मिल सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी समीर रैना के इस योगदान के लिए उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर RTGS लेन देन की जानकारी साझा कर इस योगदान की पुष्टि की गई है। दोस्तों, बाढ़ जैसी प्रकृति आपदा के समय जब हजारों परिवार मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तब मदद का हर छोटा बड़ा प्रयास उनके लिए उम्मीद बन सकता है। एंड समीर रैना का ये योगदान हमें यही याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में किसी के काम आना ही इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। और उम्मीद है कि राहत और मदद का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बाढ़ प्रभावित परिवार तक ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंच सकती है। और दोस्तों, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है तो उनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, कि आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है जिनको लगता है, आपको लगता है कि जिनकी मुझे मदद करनी चाहिए, तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है। और ऊपर वाले ने हमें इतना सक्षम बनाया है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए हमें। बिलीव इन कर्मा, जो हम करते हैं वो हमें रिटर्न मिलता ही है। और आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी क्विकली शामिल कर लेती हूँ। एक वॉइस नोट भी आया है हमारे पास और कुछ मैसेज भी आए हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हम पूरे परिवार के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। और क्या वॉइस नोट आया है, जरा हम भी सुन लेते हैं हमारी प्यारी सी लिसनर्स का। उनकी प्यारी सी आवाज में आज की मॉर्निंग क्या पहुंचाते हैं।
1: हाय दी, केम छो मजा मा, मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा लाइबा के लिए एक शायरी अर्ज करना चाहती हूँ। हर नज़र को एक नज़र की तलाश है, हर नज़र को एक नज़र की तलाश है, उस चेहरे में कुछ तो खास है। आपसे दोस्ती हम यूं ही नहीं कर बैठे लाइबा, आपसे दोस्ती हम यूं ही नहीं कर बैठे लाइबा, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है। दे मुझे एक सॉन्ग सुनवा देना, जिंदगी बन गए हो तुम, और साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा और मेरी सिस्टर नजमा की दरअसल राबिया रुकैया आसिया।
0: लगा एवरीवन आपको ये पहला सा वॉइस नोट अच्छा लगा ना। देखिए, दोस्त बहुत स्पेशल होते हैं सबकी लाइफ में, है ना। और एक ऐसा दोस्त तो सभी के लाइफ में होता है जिनसे हम बिना सोचे समझे अपनी हर दिल की बात शेयर कर देते हैं। जहाँ सोचना ना पड़े, समझना ना पड़े, वही तो पक्की दोस्ती होती है ना दोस्तों। और जहाँ विचार करके बोले तो वहाँ थोड़ा सा लगता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है हमें, लेकिन जहाँ हम बिना किसी सोच के, हम बिना किसी टेंशन के, डर के, हम बात अपनी बोल सकते हैं, तो वो होती है सच्ची दोस्ती। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं और उनको मैं जल्दी से शामिल करती हूँ यहाँ पर। गुड मॉर्निंग पहुँचाती है हमें प्रीति मुरादाबाद से। कहती हैं, कैसी हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ प्रीति, आप बताइएगा कैसी हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है तबस्सुम का, और ये मैसेज पहुँचाती हैं अपना न्यू मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आपका शो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ शानदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं अभी हम। बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी फैमिली के साथ संडे को एंजॉय कीजिएगा। ये संडे ऐसे ही यू नो मुझे लगता है कि हर दिन वैसे स्पेशल होता है, लेकिन संडे कुछ खास होता है क्योंकि हम सब अपनी फैमिली के साथ घर पर होते हैं और वो मोमेंट सबसे स्पेशल होता है ना। तो चलो बनाओ संडे को और भी ज्यादा खूबसूरत, खुशी के साथ सुनते हैं कुछ प्यारे गीत।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और दोस्तों, आज हमारी आंखें हमारे शरीर का वो अनमोल हिस्सा है जिससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, लेकिन आज बदलती जीवन शैली में हमारी आंखों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। घंटों मोबाइल देखना, कंप्यूटर पर काम करना, देर रात तक जागना, बच्चों की स्क्रीनिंग टाइमिंग बढ़ना और आंखों की नियमित जांच को नज़रअंदाज करना, ये सब हमारी आंखों की सेहत को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। इसी बेहद ज़रूरी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेष अतिथि, जिनसे हम जानेंगे कि आंखों की आम समस्या क्या है एंड डिजिटल स्क्रीनिंग का हमारी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आंखों की देखभाल कैसे की जा सकती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं, कॉल पर हमारे साथ डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: जी, आपका भी और श्रोताओं का सबका बहुत बहुत स्वागत
0: है। जी सर, सावन मास की आपको पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद।
0: जी सर, तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बता दीजिएगा सर।
1: मैं डॉक्टर विराग श्रीवास्तव हूँ, मैं सिविल लाइन्स में हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे आई सर्जन हूँ।
0: जी सर,
1: और 25 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: ओके, 25 ईयर्स से आप वहाँ पर हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि सर, आजकल जैसे आप देख भी रहे हैं कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं एंड बच्चे हो या बड़े हो, सबकी लाइफ में मोबाइल हिस्सा बन चुका है और कई घंटों हमें मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर स्क्रीनिंग टाइमिंग हम स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं, काम करते हैं, तो उससे आंखों पर कितना असर पड़ता है?
1: देखिए, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। एक तो आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से ना स्ट्रेन आपके आंखों में ज्यादा होता है, दूसरा आपकी आंखों में ड्राइनेस होती है, दो प्रॉब्लम होती है।
0: जी सर,
1: तो शायद एक बार पहले भी बात हुई थी कि एक फॉर्मूला 20-20-20 का अपनाते रहे हैं आप।
0: हाँ जी सर,
1: कि आप 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आप 20 मीटर्स दूर देखिए आप।
0: ओके,
1: तो मसल आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
0: थैंक यू सो मच सर। और जैसे अभी मैं आपसे सेकंड सवाल पूछना चाहती हूँ सर, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र के साथ आंखों से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आम हो जाती हैं, और परिवार के लोगों को बुजुर्गों की आंखों को लेकर कई लक्षणों को वो नज़रअंदाज मतलब नहीं करना चाहिए उनको, तो आप बता दीजिएगा सर।
1: देखिए, अगर बुजुर्ग लोग हैं तो मेनली प्रॉब्लम उनकी ड्राइनेस की होती है या कॉन्टैक्ट होता है ना।
0: हाँ जी,
1: दो मेन प्रॉब्लम है। तो ड्राइनेस के लिए तो उनको फिर लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं।
0: जी सर,
1: और अगर धुंधला दिख रहा है, मतलब पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बहुत साफ दिख रहा है, उनको दूर का धुंधला दिखता है, तो उसमें कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो आप चेक करें, कॉन्टैक्ट है तो उनको ऑपरेशन कराना चाहिए और उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, दूर का भी पास का दोनों का बढ़िया दिखेगा।
0: थैंक यू सो मच सर, अभी आपसे फिर से कनेक्ट होने वाले हैं, सुनते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक एंड उसके बाद आपसे बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है आंखों से रिलेटेड तो आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बस मैं लौट कर आती हूँ एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। यह है आपके अपने शहर का पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन, आपका पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जानेंगे कुछ और सवाल डॉक्टर साहब से जो बहुत जरूरी है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरांग श्रीवास्तव जी, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भव्य हॉस्पिटल से। एंड आज हम बात

0: हाँ जी सर।
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: हाँ, बारिश में देखिए ये मौसम जो बहुत अनुकूल होता है किसी वायरस से रखती है
0: जी सर।
1: बारिश में देखने से मौसम अनुकूल है, ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता है,
0: जी सर। एंड
1: तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया या फंगस आसानी से ग्रो हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, केवल आप आपको वॉश करते रहिए, प्रॉब्लम होती है देन आप कोई भी आपके स्पेशलिस्ट हो आए तो उनको एक बार चेक करा लीजिए।
0: जी सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे है सर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मैंने भी अपने आसपास सोसाइटी में भी देखा है कि कुछ लोगों की आंखों में थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है, कोई इचिंग होती है, तो वो तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं और कोई भी आई ड्रॉप ले आते हैं, वो आंखों में डाल लेते हैं। क्या वो कहाँ तक
1: वो
0: चीजें
1: है, जो कई बार उसमें स्ट्राइड होता है और उसमें आपकी सिम्पल से प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपकी।
0: जी सर,
1: आप सिंपल आपको वॉश करिए, आपको 6-8 घंटे ब्रीफ नहीं मिलता है, आप स्पेशलिस्ट के लिए वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप कोई ड्रॉप में डालिए, मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत आप जाइए किसी स्पेशलिस्ट के पास, आपको वॉश करिए, सिंपल रिलैक्स करिए, अगर 6-8 घंटे में रिलीफ नहीं मिलता है देन आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए।
0: जी सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है सर, कि जैसे आंखों को ही लेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी क्या होता है सर, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अभी छोटे बच्चे मम्मा किसी काम की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोन दे देती हैं एंड बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग पर रहते हैं मोबाइल पर, तो वो कहाँ तक बच्चों के लिए मतलब आंखों पर इफ़ेक्ट कर सकता है? क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों की छोटी एज में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा लग जाता है।
1: देखिए दोनों बात चश्मा लगने की नहीं है, दो चीजें मेन है। एक तो आप कंटिन्यू देखते हो तो आंख में स्ट्रेन कंटिन्यू रहता है
0: जी सर।
1: अब दूसरा जो है आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप जो मोबाइल पे देख रहे हो वही सोच रहे हो, उसके अलावा आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है
0: जी सर,
1: है ना। तो उन बच्चों से मेरा वो नहीं है, मेरा माँ बाप से वो है कि मोबाइल और जो है उसका डेटा जो है आप भी इसको लेके देखते हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना करें उसके लिए।
0: जी सर,
1: उसे खेलने दें, स्पोर्ट्स खेलने दें, पढ़ने दें, जो भी वो है,
0: जितना बच्चों को बाहर इंडोर यू नो एक्टिविटीज कराएंगे, आउटडोर
1: बाहर खेलें तो
0: जी
1: उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है।
0: ज्यादा तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ लास्ट, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, क्योंकि इस समय आपको तमाम श्रोता सुन रहे हैं जाती जाती।
1: यही मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को उसी ढंग से रखें जैसे हम लोग आज से 30 साल पहले रहते थे, बाहर खेलते थे, पढ़ते थे, और मोबाइल बच्चों के पास खुद नहीं होता, आप खुद ला के देते हैं, तो उसको अवॉइड करें।
0: जी सर,
1: ये मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वैसे थोड़ा दूर रखें उनको,
0: क्योंकि सर ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे जबरदस्ती तो फोन नहीं ले सकते ना जब तक पेरेंट्स की परमिशन ना हो।
1: पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल बच्चों पर।
0: जी सर, और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर पूरे दिन में आंखों को कितनी बार वॉश करना चाहिए?
1: कितनी बार कर सकते हैं जो आपको मन करे, उसमें कोई हार्म नहीं है।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: 6 बार।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी एडवाइस दी, इसके लिए दिल से शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी और सारे श्रोताओं को भी, थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, ये तो हमारी हुई सर से बातचीत और सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए दोस्तों, सर ने जैसे कहा कि अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा कोई काम, जैसे अभी क्या होता है घर में बहुत सारे काम होते हैं, मम्मा करती रहती हैं, तो बच्चों को किसी ना किसी चीज़ों में लगा देती हैं कि चलिए फ़ोन थोड़ा दे देते हैं बच्चों को ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को लत लग सकती है फ़ोन देखने की, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय आप बच्चों को मोबाइल ना देकर कुछ और भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ताकि उनका ध्यान मोबाइल से हटकर और चीज़ों पर जाए। जब वो और नई नई क्रिएटिविटी करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, आंखें भी उनकी यू नो हेल्दी रहेंगी और आप सभी हैप्पी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत और लौट कर आते हैं हम।

0: क्या आप
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रूपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और आपको समय बता देती हूं, वक्त हुआ है 11:55। कैसे वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं ना तो समय का पता नहीं चलता है, और जब हम आप सभी के साथ होते हैं तो कैसे 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं पता नहीं चलता है। मुझे लगता है कि और वक्त मिलना चाहिए, क्या कहती है हमारी ऑडियंस? हाँ, 1 घंटा और मिलना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे सर से इस विषय में, लेकिन अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी के यहाँ पर खूबसूरत बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ कि हमारी ऑडियंस आज की मॉर्निंग क्या पहुँचाती है, प्यारे प्यारे जो लिसनर्स हैं वो क्या पहुँचाते हैं आज की सुबह। सुन लेते हैं उनकी दिल की बातें, भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी दिल की बातें जानना हमारे लिए। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रशांत जी का, और ये कहते हैं कि मैम अभी आपने जो डॉक्टर साहब से बातचीत की हमें बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ हमें आँखों के बारे में जानने को मिला, क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी सी आँखें अगर हम इनका देखभाल अच्छे से कर पाएंगे, रख पाएंगे, देख रेख अच्छे से करेंगे तो हम तभी इस खूबसूरत संसार का भी आनंद ले पाएंगे, खूबसूरत दृश्य को देख पाएंगे। एग्जैक्टली सर, आई एग्री विद यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज पहुँचाती है प्रीति जी विकास नगर से, और कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और इनको भी आज का कार्यक्रम हमारा पसंद आया, धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल मेरा हो गया है जाने का वक्त, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अगेन आपको मिलने वाली हूँ सी यू सून 3 से 5 बिंदास फोल शो में, जहाँ पर बिंदास पाती होंगी। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपना अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए खुशी मिलेगी आपको 3 से 5। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की

किया है। मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जोकर।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे
2: रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
1: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
2: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीवी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
2: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
2: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
2: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
2: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं, ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
2: छह महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
2: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
2: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को दोगुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
2: बहुत आसान है, बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
2: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
2: फायदा सीधा है, स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
2: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
2: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कहीं प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कहीं के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
0: दृष्टि चक्र वह कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये

0: बात पता ही नहीं चलती।
1: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
0: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
1: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
2: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
2: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
2: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
2: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
1: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
2: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
2: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
1: किस तरह का भोजन करें?
0: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
1: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
2: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
1: अच्छा?
2: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
2: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
2: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
0: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
0: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
2: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
2: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ के लिए, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA, MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस स्टेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन्स स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
3: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
2: ठीक है मैम।
3: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
2: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
3: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
2: ओके, ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
3: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
2: ठीक है।
3: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
2: ठीक है।
3: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
2: ज्यादा है।
3: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
2: ओके।
3: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
2: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं, या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
3: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
3: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
2: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
3: दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
3: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
2: राइट।
3: हीम प्रोटीन होता है।
2: राइट।
3: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
2: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
3: बिल्कुल करना,
2: सारे
3: विटामिन, और जितने सेब हैं,
2: हाँ जी, जो
3: फ्रूट्स
2: हैं,
3: ओके,
2: फ्रूट्स हैं, मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
3: बिल्कुल सही,
2: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
2: हाँ जी,
3: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
2: ओके,
3: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
2: ओके।
3: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
2: कम हो जाता।
3: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस हैं, लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
4: ओह माय गॉड,
3: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
4: कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं,
3: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
4: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
3: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं किसी डॉक्टर को, जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
4: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. Welcome. हमारे साथ आने के लिए guys, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते।
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना न केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
5: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
4: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
5: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
4: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है। और फिर हम बिना जाने अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या दूसरों से हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है? तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं आरजे रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में उसने तुमसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? और बड़े होते होते तुलना बदल जाती, तनख्वाह, गाड़ी, घर, रहन सहन, शादी, बच्चे और आजकल सामाजिक माध्यमों पर दिखाई जाने वाली जिंदगी, मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई ना कोई तुलना हमारा इंतजार कर रही होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, यानी कि ये मेहनत पर निर्भर करता है। आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा।

0: नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों को बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करे, खुद पर ज्यादा काम करे। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना, उतना ही आपको टेंशन होगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसीलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
1: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये तुलना मानसिक दबाव बन जाती है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन सोच बदल देता है। प्रेरणा कहती है मैं भी कोशिश करूंगी, और तुलना कहती है मैं उसके जैसी क्यों नहीं। बस सोच का यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी भावना बदल देता है। तो दोस्तों, अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से और कनेक्ट हो गए श्रोताओं आप सभी के बीच। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और हम शो कर रहे हैं यानी कि सोच बदलो। मोस्टली आप सभी आनंद को सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलो में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसा कि मैंने आप सभी को बताई है श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो लाइक हमारी हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती है, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं। राइट ना?
0: बिल्कुल।
1: तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा नहीं होता है,
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे हैं, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड को एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

हाँ जी, एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोता। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए, सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे कि अभी भी हम पीछे हैं, तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें, आगे बढ़े, सबसे बातें करें। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़की की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया, हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो। बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में, आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है, लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को दो, वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे, हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है, यार मैं अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर

0: बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहां करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए, उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना, तो पूरा कायनात भी एक क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लाइक जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है, तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे चलकर वो और भी अच्छा करें। क्यों? और दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है, वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों, आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूं? अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटे वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दे।

0: देखिए हम अपने वादे के अनुसार लौटकर आ चुके हैं आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है सोच बदलो और दोस्तों तुलना से बाहर कैसे निकलें ये हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ी काम की बातें भी कर लें कि दोस्तों अगर आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली बात, सामाजिक माध्यमों पर से थोड़ा कम कीजिए, दूसरों की बातें अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाइए। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। और चौथी बात, किसी और की सफलता देखकर जलने की बजाय खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। और पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्रगति भी प्रगति होती है एवरीवन, जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो भी एक जर्नी होती है बड़ी खूबसूरत सी। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होगा ना तो मंजिल भी यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल होगी।
1: अब मैं एक मजेदार बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। कभी कभी हम अपने जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी देखने में बहुत व्यस्त होते हैं। आपके पास जो है शायद किसी और का सपना हो, आपका परिवार, आपका घर, आपका काम, आपका हुनर, आपके अपने लोग, या फिर एक बस शांत सुबह। हर चीज को सफलता के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग हो सकती है। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, क्या पता उसका सपना हो, वो करना चाह रहा हो और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप अपने सोच पर ये बात हाँ मत होने दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को बदलिए और खुद को ऐसा बदलिए कि सामने वाला कहे वो जले ना, बस उसके दिमाग में इतना सोच आ जाए कि ये आगे बढ़ सकता है, भाई ये ऐसा बढ़ सकता है तो मैं भी इसे प्रेरणा ले लेता हूँ कि भैया तूने कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
0: एक लाइन मुझे याद आ रही है बड़ी खूबसूरत सी है कि जब बदलते हैं नजरें तब बदल जाते हैं नजारे, जब बदलता है नजरिया तब बदल जाते हैं नजारे, जिंदगी में मानो तो सुख ही सुख है, न मानो तो जिंदगी है दुख का दरिया।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं एक और कहावत, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो जरूर आता है।
0: ये सर्कल चलता रहता है जिंदगी में, आप भी घूमते रहिए, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जो होगा बेस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है नेहा शर्मा की। नेहा एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में कामों में मदद करने वाली और अपने छोटे छोटे सपनों के साथ खुश रहने वाली। लेकिन नेहा की एक आदत थी, वह हर समय अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहती थी। उसकी एक सहेली थी रिया। रिया की नौकरी न से पहले लग गई,

0: माँ ने पूछा, बेटा आजकल तुम बड़ी चुप चुप सी रहती हो, क्यों? नेहा ने कहा, माँ लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने नेहा से कहा, बेटा तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी का हिसाब रखती हो, कभी अपनी जिंदगी का हिसाब भी लगाया है? नेहा चुप हो गई। माँ ने आगे कहा, तुमने पिछले साल अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, पापा के इलाज के समय घर संभाला, अपनी पहली नौकरी के लिए कितनी मेहनत की, और सबसे बड़ी बात तुमने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो, हो सकता है जिस जिंदगी को तुम कम समझ रही हो कोई और उस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। ये बात नेहा के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार मोबाइल एक तरफ रखा और कागज पर लिखा, मैं दूसरों से नहीं कल वाली नेहा से मुलाकात करूंगी। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां अचीवमेंट्स नोट करनी शुरू कर दिए। अगले दिन अपनी पुरानी किताब निकाली, एक नया कौशल, एक नई स्किल सीखने का फैसला किया, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया, और सबसे जरूरी उसने दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद नेहा की जिंदगी अचानक बिल्कुल नहीं बदल गई थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है। नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल मत समझिए, और अगर तुलना करनी ही है तो आज अपनी तुलना कल वाली अपनी तस्वीर से कीजिए, क्योंकि असली जीत तब है जब आप कह सकें, हाँ मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ। यही है आज की सोच बदलो की असली सोच। दोस्तों, आज की सोच बदलो से जाते जाते बस एक बात अपने साथ लेकर जाइएगा, दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा पर शक मत कीजिए। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं, किसी की खूबसूरत तस्वीर आपकी जिंदगी को कम खूबसूरत नहीं बनाती, और किसी का आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाना आपके अंदर से पहुंचने का परिणाम नहीं है। बस अपना रास्ता देखिए, अपनी मेहनत देखिए, अपनी प्रगति देखिए। कल अगर आप आज से एक कदम भी आगे बढ़े तो आप जीत रहे हैं। और आज की सोच बदलो का सबसे बड़ा संदेश, दूसरों से मुकाबला करना बंद कीजिए, अपने कल से मुकाबला कीजिए, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं आपके कल वाले रूप से है। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी, मिलते हैं अगले सोच बदलो में एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मत तोलिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी की नकल नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल अनोखी कहानी है। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मैं हूं आपके साथ आपकी आर्जरीना, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं, अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए, अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है? और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर क्या है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर

0: किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
1: देखिए मैं पहले तो आपके कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज लीगल टॉक जो आपने चलाई है, खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है।
2: बिल्कुल।
1: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ, जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
2: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाते
1: हैं। जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
2: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है।
1: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं एक सपनों का घर मरा, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया है, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
2: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए।
1: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट लें, 2 लाख में प्लॉट लें, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में, तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए, और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है, रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
2: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
1: देखिए वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज्ड बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वगैरह में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
2: क्या बात है। क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
1: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
2: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
1: देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म है चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
2: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
1: देखिए, समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती है जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
2: तो श्रोताओं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए, बातों के साथ साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमारी सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो ये जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है तो बिना रेरा के एक तो वो रोक लग जाती है उस पर, और सबसे बड़ी चीज अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर्स उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
0: अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
1: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके से अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: श्रोताओ, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले एक कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको परमिशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करिए, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
0: सो एक बहुत ही ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
1: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी चीज आपको कमिट करी है और रिटर्न में कमिट करी है तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अपने कंज्यूमर को जो आप जो एंड यूजर है उनको वो प्रोवाइड कराए, उसको फुलफिल करे, और खरीदार उन सुविधाओं की उससे मांग भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आवश्यकता होने पर आप कानूनी कार्रवाई भी बिल्डर के खिलाफ भी कर सकते हैं।
0: क्या मौखिक वादा अदालत में मान्य होता है?
1: देखिए, अदालत में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है ना, सब चीज लिखित, दस्तावेज अधिक मजबूत साक्ष्य होते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लेना जरूरी होता
0: है। मतलब जो लिखित है उसको मतलब ट्रस्ट किया जाता है।
1: कोई देखिए, कोर्ट में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती है, हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान ले।
0: बिल्कुल श्रोताओ, तो देखिए, मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं।
1: बिल्कुल, अगर कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रपोजल है तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है।
0: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
1: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
0: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
1: देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं, कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रखना।
0: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
1: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया है और कल को वो उसे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
0: तो मान्यता है?
1: बिल्कुल है मान्यता।
0: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
1: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
0: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
1: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
0: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं?
1: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
1: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमें, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आईबीसी बोलते हैं जिसको, है ना, आईबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अंगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स है उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई इस समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके तो मतलब सर क्लियर हो गया अब उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है वो, उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर आरटीजीएस है, नेफ्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लोकल आप डीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पे लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप उस सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके बाद बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए मैलाफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का आपका अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप डीडी से पेमेंट कर रहे हैं तो डीडी की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, तभी आप इनसे बच पाएंगे। तो सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे कोई उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसी कोई आपको जो है मैलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
0: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
0: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं, याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

0: है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
5: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
7: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और देखिए, मैं कहीं नहीं आती हूं महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्के में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं, बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए, काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की, और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है, आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी, शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम, बातें सुन रही है भैया लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ।
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना,
0: मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: चाहिए। वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है। सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा।

बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा, तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा, मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा, सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ, अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए। लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आज कल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे, मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें। लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो। अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है दीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना ले और उनके साथ कहीं भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपनी सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ,
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, मेरा जो दिल है ना, वो बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनता है। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं ना, मेरा दिल एकदम बेचैन हो जाता है, कहता है चलो चलो अब हमारे प्यारे श्रोताओं से बातचीत करने का वक्त आ गया है। और सच बताऊं दोस्तों, 3 बजते ही ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल मुझसे पहले ही तैयार हो जाता है। और आज आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शो का नाम है बिंदास बोल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। क्योंकि आपसे बात करने की जो खुशी है ना, उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने शो की शुरुआत। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे, तभी तो मैं आई हूँ ना जल्दी जल्दी से। तो एवरीवन, आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा मैसेज पहुंचाना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और

वक्त मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 3:10 स्टूडियो की घड़ी में। और देखिए, सावन का इतना पावन महीना चल रहा है ना, सबके हाथों में। कल मैं एक फंक्शन में गई थी, तीज फंक्शन में, एंड वहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल लेडीज सब रेडी होकर आई थी, इतना खूबसूरत माहौल लग रहा था। और मुरादाबाद ऑडियंस से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मुरादाबाद के सभी लोग बहुत प्यारे हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैंने सभी के हाथों में कल ग्रीन ग्रीन बैंगल्स देखा, सबने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी सब, ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ी, एंड बालों में गजरा लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, ओए होए होए, कमाल ही कर देता है कल तो। तो मैंने सोचा कि जब इतनी प्यारी प्यारी हमारी महिलाएँ जो विमेंस थी, वो कल तैयार होकर आई थी, और अभी भी सावन जैसे ही शुरू हुआ तो सबने हाथों में ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली हैं, उसका महत्व भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, शबीर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, गोरी है कलाइयां तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद में लौट कर आती हूँ, और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं आज अपने शो में, क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा। सुनते रहिए अपने सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, मुस्कुराना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।

क्या बात है दोस्तों, इतना खूबसूरत गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी आज के अर्जुन से लता मंगेशकर जी और साथ में शबीर कुमार जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि सावन और हरी चूड़ियों का खूबसूरत रिश्ता क्या है, मैं बताती हूँ। जैसे सावन आता है तो सभी हमारी जो वीमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हाथों में ग्रीन चूड़ियाँ पहनती हैं, ग्रीन साड़ी, ग्रीन बिंदी, ग्रीन नेल पेंट एंड बड़ी खूबसूरत लगती है ना। और अभी हमारी जो फीमेल सुन रही हैं हमें, उन्होंने भी ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है। देखिए कैसे अपने हाथों को निहार रही हैं। दोस्तों शुकनाम बिंदास बोल है और सावन आते ही जैसे प्रकृति हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है वैसे ही हमारी महिलाओं के श्रृंगार में भी हरे रंग की खूबसूरती दिखाई देने लगती है। हरी चूड़ियां, हरी मेहंदी, हरी साड़ी, सावन में ये रंग महिलाओं के श्रृंगार का खास हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में हरी चूड़ियों का इतना महत्व क्यों माना जाता है? दरअसल भारतीय परंपरा में हरा रंग हरियाली, प्रकृति, नई ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना खुद प्रकृति के सबसे हरे भरे रूप को सामने लाता है, इसीलिए सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा भी इस खूबसूरत मौसम और प्रकृति से जुड़ गई है। और हमारे संस्कृति में चूड़ियाँ सिर्फ एक आभूषण नहीं, इनकी खनखन में जैसे स्त्री के श्रृंगार, खुशी और उत्साह की एक अलग ही कहानी छिपी होती है। सावन में जब हाथों में हरी चूड़ियाँ खनकती हैं, हथेलियों पर मेहंदी रचती है और बाहर बारिश की बूंदें बरसती हैं, तो पूरा माहौल ही जैसे कहता है आ गया सावन। हाँ, लेकर खुशियाँ और हरियाली और मेहंदी की

बात करें तो सावन में मेहंदी लगाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। महिलाएं और जो गर्ल्स हैं मिलकर मेहंदी लगाती हैं, गीत गाती हैं और त्यौहार की खुशियां मनाती हैं। और तो दोस्तों, मेरी जो प्यारी महिलाएं इस समय हमें सुन रही हैं ना, हाँ मैं आप ही से कह रही हूँ, आप भी मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरा आज का क्वेश्चन भी आपसे है कि सावन आते ही आपके हाथों में सबसे पहले क्या सजता है, मेहंदी या फिर चूड़ियाँ? हाँ जी बताइए, दोनों चीजें लगाती हैं आप, तो बताइए आपने अभी तक चूड़ी पहनी है या नहीं पहनी है, फटाफट से मैसेज पहुंचाइए। नंबर हमारा है 9837896896। अभी लौट कर आते हैं तो कुछ अपडेट भी हैं जो आप तक शेयर करनी है। बस आप यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। शो का नाम बिंदास बोल है, जहां पर हम बिंदास होकर बातें करते हैं। तो आप भी बात करने के लिए तैयार है ना, मुझे पता है आप भी बात करने के लिए तैयार है, फटाफट से मैसेज पहुंचा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज आप हमें कॉल का सेशन तो नहीं है हमारा, तो प्लीज कॉल मत कीजिएगा क्योंकि बैक टू बैक हमारे श्रोताओं के कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैसेज करना है, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आप वॉइस नोट भी पहुंचाना चाहते हैं, प्यारी सी मधुर सी आवाज, तो वो भी पहुंचा सकते हैं, ये मौका आपको खुशी देती है।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

Hi everyone, good afternoon. Once again, welcome back. रेम फिल्म अहमदाबाद 89.6। और सच में संडे का दिन होता है अपने आप स्पेशल, अपने लिए वक्त निकालने का दिन होता है जब हम खुद को टाइम देते हैं, संडे में आराम करते हैं। और सर सवर के तो आप रेगुलर रहती हैं, नो डाउट।

और आपके यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। लेकिन दोस्तों आज एक बेहद खास और यू नो खबर उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तराखंड की रेणु धरियाल ने करीब 9 फीट लंबे बालों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। रेणु के इतने लंबे बाल सिर्फ उनकी खूबसूरती की पहचान नहीं बल्कि इसके पीछे है सालों की मेहनत, धैर्य और अपने बालों की लगातार देखभाल। जहां आज के दौर में लोग अपने लुक के साथ लगातार बदलाव करते हैं, वहीं रेणु जी ने अपने लंबे बालों को वर्षों तक संभाल कर एक अलग ही पहचान बनाई है। उनकी ये उपलब्धि हमें एक खूबसूरत संदेश तो देती है कि अगर किसी चीज को पानी का जुनून हो, धैर्य हो और लगातार मेहनत की जाए तो आपकी अलग पहचान जरूर बन सकती है। रेणु धरियाल जी को इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयां। वाकई एवरीवन, 9 फीट लंबे बाल, और उससे भी बड़ा उनका हौसला, समझ रहे हैं आप। और हम क्या करते हैं बताइए, आप अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हैं? बताइए मुझे, आप अपने बालों को कैसे खूबसूरत रखते हैं? हाँ जी, कैसे उनकी केयर करते हैं? आज हम अपनी महिलाओं से यही जान लेते हैं। चलो बताओ जल्दी से कि आप अपने इतने खूबसूरत बालों का आपका क्या राज है, आप कैसे अपने बालों की केयर करते हैं? नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप उसकी चिंता ना करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आपसे मैंने एक सवाल पूछा था आज की दोपहर कि सावन आते ही आपके हाथों में सबसे पहले क्या सजता है, मेहंदी या फिर चूड़ियां? तो हमारी प्यारी प्यारी जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, जो मैम हमें सुन रही हैं, उनका मैसेज आया है हमारे पास। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अंकिता जी का, अंकिता शर्मा जी का। कहती हैं, हाय खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। एंड कहती हैं कि आपका बिंदास बोल शो हम सुन रहे हैं, आपने सावन की बातें की तो सच में बहुत अच्छा लगा। सावन आते ही सबसे पहले मेरे हाथों में हरी चूड़ियाँ सजती हैं, इनकी खनखन सुनते ही लगता है कि सावन सच में आ गया है। आपको और आपकी पूरी टीम को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सेम टू यू मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास नेहा जी का आया है और ये मैसेज पहुंचाती हैं बुद्धि बिहार से। कहती हैं, हेलो खुशी जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी। कहती हैं कि आज आपने बिल्कुल दिल की बात कर दी है। सावन आते ही मुझे सबसे पहले मेहंदी लगाने का मन करता है और उसके बाद हरी हरी चूड़ियां पहनने का, बारिश, मेहंदी और चूड़ियों की खनखन। सावन से ज्यादा और क्या खूबसूरत होगा। अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया दीपांशी का और ये कहती हैं, गुड आफ्टरनून खुशी मैम, हम आपको एवरी डे सुनते हैं एंड आप सैटरडे नहीं आते हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अरे थैंक यू। और ये कहती हैं कि मैम हम आपका शो सुन रहे हैं बिंदास बोल, और सावन की बात चली है तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। पहले सावन आते ही हम सहेलियां झूला झूलती थी और हाथों में हरी चूड़ियां पहनती थी। आज भी हरी चूड़ियां देखते ही वही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ये तो है। और डिसाइड किया करते थे सब लोग मिलकर ना पहले कि अच्छा ये बताओ तुम क्या पहनने वाली हो। मंडे जैसे मंडे आता था तो हम लोग सब डिसाइड करते थे मिलकर, मेरी जो फ्रेंड्स थी, कि देखो कल मंडे है और हम लोग सब शिव जी के मंदिर जाने वाले हैं तो कल कौन सा ड्रेस पहनने वाली हो, कौन सा सूट पहनने वाली हो। तो हम सब डिसाइड करने के बाद साथ मंदिर जाया करते थे और बहुत अच्छा था वो पल ना, अभी भी मैं मिस करती हूँ। देखिए आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन क्या होता है ना, अभी वो सखियां नहीं है, सब अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हो गई हैं, किसी की शादी हो गई है तो कोई अपने करियर में आगे, मतलब दूसरे सिटी में रहती है तो कोई स्टडी की वजह से बाहर रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब बात करना शुरू करती है ना, उनका कॉल आता है दोस्तों का, तो घंटों कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब घंटे निकल जाते हैं
पता नहीं चलता है, और अभी भी फिर भी ऐसा लगता है कि ओ हो अभी तो कुछ बातें और रह गई थी ना। ऐसा मतलब तो बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्ती का रिश्ता। तो चलो इतनी सारी बातें हमने कर ही ली है, तो सुन लेते हैं एक खूबसूरत से गाना फाल्गुनी पाठक जी की आवाज में। उसके बाद में लौट कर आने वाली हूँ, फिर करूंगी आपसे ढेर सारी बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो आप तक पहुँचानी है। तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और अपना मैसेज पहुँचाना बिल्कुल ना भूलिएगा।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोब राधा कृष्ण शर्मा, जिला जयपुर राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मेला, हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ, और वक्त हुआ है अभी 3:41। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पारंपरिक इत्र कारोबार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के जरिए कन्नौज के छोटे और पारंपरिक इत्र कारोबारियों को आर्थिक सहायता, विशेष परीक्षण और टूल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कन्नौज का इत्र सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अब विदेशी बाजारों में भी अपनी खुशबू और पहचान मजबूत कर रहा है। गुलाब, खस और मिट्टी जैसे प्राकृतिक इत्रों की खास मांग होती है। सरकारी सहयोग से इन पारंपरिक कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय मेले में अपने उत्पादन प्रदर्शन करने का अवसर भी मिल रहा है। इससे एक तरफ छोटे कारोबारियों को बाजार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और सबसे खास बात कन्नौज की सदियों पुरानी इत्र बनाने की कला को एक नई वैश्विक पहचान मिल रही है। कन्नौज की मिट्टी में सिर्फ खुशबू नहीं, एक पूरी विरासत बसी है और अब यही खुशबू दुनिया तक पहुंच रही है।

और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं अपनी मुरादाबाद लोकल अपडेट के बारे में। जी हाँ, मुरादाबाद में क्या कुछ चल रहा है सब आपको पता लगेगा अर्ली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप ही अपने संदेश हमें पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो बस लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद चलेंगे कुछ म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद करने वाले हैं हम आपसे बहुत

0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम 89.6 पर। खुशी के साथ हैं आप और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना मिस्टर एंड मिसेस माही, मोहम्मद फैज जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। देखा तेनु पहली बार में। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद लोकल अपडेट की। जी हाँ, मुरादाबाद सिटी में क्या हो रहा है लोकल और वोकल जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुरादाबाद में इस वक्त ये जो अभी अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कांवड़ यात्रियों और सावन की दूसरे सोमवार को देखते हुए मुरादाबाद जिला प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 और 11 अगस्त को जिले के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा वाले स्थानों पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग पर करीब 300 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी के साथ ही लोगों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय भी खोले गए हैं। रास्ते पर साफ सफाई, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर रखने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात नियमों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और यात्रा को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। और मुरादाबाद वासियों के लिए एक और खास बात, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की जा रही है। तो ये थी मुरादाबाद की लोकल अपडेट। ऐसे ही आपके अपने शहर के आसपास क्या चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं एंड क्या कुछ खास चल रहा है, सब आपको अपडेट मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, बस यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। क्यों साथियों, आपको भी बातचीत करनी चाहिए ना हमसे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल से काम करना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज पहुंचाना है। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से पहले चेन्नई के ड्रोन वास्को स्कूल में वंदे भारतम 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भारतनाट्यम की शानदार

प्रस्तुति दी। छात्राओं ने तिरंगे से प्रेरित होकर राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई और अपनी प्रस्तुति के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का खूबसूरत संदेश दिया। बच्चों की इस शानदार प्रस्तुति ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वाकई दोस्तों, जब नन्हे कदम तिरंगे के सम्मान में उठते हैं तो देशभक्ति का जज्बा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। एंड वंदे भारतम 2026 की शानदार प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का रंग और भी गहरा कर दिया। जय हिंद, जय भारत। तो सुनते हैं एक देशभक्ति गीत, लौट कर आते हैं हम। एंड आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, मैं इंतजार कर रही हूं। और बाकी बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Na chali, o chali.

हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिल्म मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल से ये ब्यूटीफुल ट्रैक, ओ राधे राधे राधे तेरे बिना कृष्णा भी लगे आधे आधे। और आप सभी को कामिका एकादशी की वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, वक्त भी मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है अभी 4:21।

और दोस्तों आज की ये खबर वाकई दिल को छू लेने वाली है। साक्षी चौधरी की गोल्ड जीत में विराट कोहली जी का भी बड़ा योगदान रहा। साक्षी ने अपने सफर को याद करते हुए बताया कि विराट कोहली जी ने उनकी करियर के शुरुआती अहम दौर में उन्हें इंस्पायर किया था और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। गोल्ड जीतने के बाद साक्षी ने कहा कि मेरी जर्नी में विराट कोहली जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यानी दोस्तों किसी की सफलता सिर्फ उनकी अपनी मेहनत की कहानी नहीं होती, कभी कभी किसी का छोटा सा योगदान, भरोसा और हौसला भी किसी के बड़े सपनों को उड़ान दे देता है। साक्षी को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और विराट कोहली जी को इस सपोर्ट के लिए सलाम। तो दोस्तों हमारी देश की बेटियां हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो आप भी, हम छोटी सी अपील करेंगे आपसे, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें हौसला दीजिए और वो भी देखिए कर दिखाएंगी कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी उनके जैसा। सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं, फिर से करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। और अभी अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं अपने, आज की शाम आपका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं आप? संडे स्पेशल है भाई, कल मंडे की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: Mera milna likha to hoga kahin.

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है अभी 4:33। शो का नाम है बिंदास पोल, जहां पर हम बिंदास होकर बातें करते हैं। और दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान स्टार्ट हो चुका है। एंड तिरंगा सिर्फ 3 रंग का झंडा नहीं, ये हमारे देश की आन है, हमारे देश की शान है और हमारी पहचान है। दोस्तों, देशभक्ति की भावना से जुड़े एक बेहद खूबसूरत पहल की शुरुआत की हो चुकी है एंड हर घर तिरंगा अभियान। इसी अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और दिलों में देश के लिए सम्मान, इस यात्रा का पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक है। और दोस्तों, हर घर तिरंगा सिर्फ घर पर तिरंगा लगाने की मुहिम नहीं है, ये उस भावना को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास है जिसमें हम अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान, समर्पण, गौरव महसूस करते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं, लेकिन सिर्फ अपने घर की छत पर ही नहीं, अपने दिलों में भी तिरंगे के लिए सम्मान को जगह दें। और दोस्तों, तिरंगा जब आसमान में लहरता है ना, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की एकता, देशभक्ति की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और भी अपडेट आपके लिए यहाँ पर है, बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, चाहे आप सफर में हो या आप घर में हो। मैं आती हूँ बस एक प्यारे से छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप कहीं मत जाइए, लौट कर बस मैं आती हूँ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपको बताने वाली हूँ अभी लौट कर जब आऊंगी तो वेदर अपडेट के बारे में। जी हाँ, कल का मौसम कैसा रहने वाले हैं, क्या कुछ है, सब पता चलेगा आपको ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

देखिए दोस्तों, हम तो चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा काम ही बोलने का है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास बोल। और दोस्तों, अगर हम बात करें अभी वेदर अपडेट की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और बात करें अगर अपने मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद शहर में कल यानी 10 और 11 अगस्त को बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो अगर आप कल बाहर निकलने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो दोस्तों अपना रेनकोट छाता अवश्य अपने साथ रखें।

और दोस्तों सावन की शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि सावन की, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। शिव भक्त भी अपनी पूरी तैयारी में हैं और हमारे मुरादाबाद की नगर निगम ने भी जोरों शोरों से कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं की हुई हैं और साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखा गया है। नगर निगम जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें नगर निगम ने मुरादाबाद की, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना, इतना अच्छा काम हमारे मुरादाबाद की नगर निगम कर रहे हैं। और दोस्तों बात करें अगर फिल्मी दुनिया से, फिल्मी दुनिया की, तो फिल्मी दुनिया से नहीं, एक दिलचस्प खबर सामने आई है। एंड फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल और प्रीति जिंटा चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान सनी देओल जी ने इंस्टाग्राम पर चंडीगढ़ आई लव यू लेकर अपने फैंस के लिए प्यार जाहिर किया। फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसी लेकर फैंसों में भी जो सनी पाजी के फैंस हैं वो काफी, उनके मन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सनी देओल जी और साथ में प्रीति जिंटा जी की ये जोड़ी पर्दे पर फिर कितना धमाल मचाती है,

0: साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradaba 89.6 FM.

0: हेलो गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास बोलो, और बिंदास होकर बातें हम कर रहे हैं आप सभी के साथ। एवरीवन, वक्त हुए हैं अभी 4:55, 4:50 हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों, सावन का इतना पावन महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के बीच सहारनपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ दोस्तों, नोटों से सजी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक कांवड़ पर करीब 2,70,000 रुपए और दूसरी कांवड़ पर करीब 50,000 रुपए के नोट लगाए गए हैं। वही कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी लगातार कांवड़ियों के साथ चल रहे हैं। वाकई आस्था के इस सफर में ये अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान खींच रही है। और दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको सी यू सून। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए, एंड हैप्पी संडे, कीप स्माइलिंग एवरीवन। और मुझे पता है कि कल सावन का दूसरा सोमवार है, आप सभी को भी मालूम है, और तैयारियां भी चल रही हैं घर में कि चलिए जल्दी से मार्केट से जाकर बेल पत्र ले आते हैं, भांग धतूरा फूल, सारी तैयारियां आज हो जाएंगी। तो सुबह सवेरे आप स्नान करने के बाद तैयार होकर मंदिर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
1: Mixing in the house.

इकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजीरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम,
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहे, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोड़ दिया गया है।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती है।
4: फैमिली ज्यादा आती है
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार।
5: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: हम भी वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए, लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18+ होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18+ होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो।
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, उसका डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है, डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है। यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर, जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास,
1: हाँ,
0: वो चाहे स्कूटी चला रहो, बाइक चला रहो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है?
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने आप उसको आपको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था, तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने हैं। अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर वो चीज ऑथेंटिक है, सही है, तो वो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है, तो
1: वो गलत है। कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी, लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दे, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे, इंश्योरेंस की कॉपी दे, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो है चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहनने रहते, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो लिहाजा आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है, उसकी वजह से तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने, बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही, तो आप क्या करेंगे?
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ होती है, तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
1: अनिवार्य है, सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है, तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है, मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चालान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके।
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव करना।
0: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, जो ई चालान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चालान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर हो जाएगी, आपका चालान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चालान कट जाएगा आपका उसमें।
0: ओके।
1: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चालान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है पेनल्टी वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओ, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आजकल की जो जेंजी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिग-जैग गाड़ी नहीं चलानी है, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना, तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते हैं।
1: हाँ, तो वो सब चीजें गलत है। वो एक स्टैंड जो आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टैंड वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है, और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टैंड मारते
1: हैं। हाँ, ये गलत है, इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ,
1: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है, तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए, अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं आप उनको कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है, उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया, या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं ठीक है परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते
1: हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है।
1: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
0: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
1: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
0: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
1: देखिए कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस ये दो तीन चीजें हैं।
0: सर जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है विमेन है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए भाई मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
0: वो तो है सर।
1: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो भी लॉज है उसको आप फॉलो करें।
0: तो चलिए श्रोता ये शो हम यही खत्म करते हैं, उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है, घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए, छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियां हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 9.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था। लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यही उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे, वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में, और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला न सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर्स से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस है या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है, बिल्कुल होश और हवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है, उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं, और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
1: एज देखिए, 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी हैं, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती है जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट को, आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले आना है, बस बात खत्म। तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस कि लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार। जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रही हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब एक उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके।
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके। क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयंअर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आप कानूनी मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्मत वसीयत बनवाएं, जो भी एस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें। और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, उनके लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात होगी, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे यहाँ।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पापा ये सब?
4: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
3: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
4: अरे ये कैसे रह गया?
3: पैसे गए?
4: नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व

अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का पांचवा वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस वर्ष अभियान के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष बल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाऊ से तिलकनगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
2: 15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
3: CAG रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आती 24 रिपोर्ट आ चुकी, हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई, इसमें भी 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं CAG ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी है।
0: श्री सिंह ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, GST पंजीकरण, ईवे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। DMRC ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन

0: के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए डीएमआरसी को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोती नगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
1: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद, एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी कि आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
5: तुमने बुलाया नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
4: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम क्यों हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
5: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
4: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करी है भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती है भैया, बता रहा हूँ आपको।
5: तभी बार बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
4: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सुवेल कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के?
5: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा
4: है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा शायर हमने बुलाया है, सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
6: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
4: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो, तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
6: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
4: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्यों अखिल भाई?
5: बिल्कुल सही कह रहे हो।
4: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
6: थोड़ा नर्वसनेस
4: हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
6: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
6: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
4: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
6: एक दो बार ट्राई करी थी।
4: अच्छा
6: मैंने।
4: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
6: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
4: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं मुरादाबाद में?
6: मैं मुरादाबाद में एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमकपुल के पास है।
4: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
6: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
4: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
6: आगे मेरा MBA करने का प्लान है।
4: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
6: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
5: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
4: यार, मैं वही पूछ रहा, मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए भाई।
5: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
4: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
6: नहीं,
4: फिर
6: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
4: अच्छा
6: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
4: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
6: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
4: अच्छा
6: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
4: ऑलराइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
5: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार कहां दिल तोड़ोगे।
4: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
6: ओम अग्रवाल।
4: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
6: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
4: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
6: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
7: ऑलराइट, मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद, है ना?
6: कोई शब्द ही नहीं है।
7: नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं इनका क्या नाम है?
6: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ हैं?
6: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर तो।
7: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
6: दोस्ती में
7: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त तो टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती है।
5: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरा एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है।
7: अच्छा।
5: राहुल जैन करके।
7: अरे वाह।
5: तो मैं 9th क्लास में था उस समय और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी। तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, हाँ भी तू चल, तुझे तो कल देख लूंगा। मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों। तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं। ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स। तो वो एक कार्ड लेके आया, तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा,
7: आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कुछ और ही मामला होगा। तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में नाना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों, आपको क्या लगता है?
6: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
7: एब्सोल्युटली,
6: इंसान सब अच्छे होते हैं।
7: करेक्ट।
6: तो ढूंढना होता है बस।
7: अच्छा, कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है।
6: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, बस सीखा हूँ।
7: अरे वाह,
6: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की।
7: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप।
6: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी।
7: ओके।
6: तो मैंने उससे सीखा।
7: एक होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म। वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो।
6: हाँ, कह सकते हैं।
7: और अच्छा, ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होगी यार आज की शाम। सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास, अरे मैं एंड साथ में अखिल अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अखिल जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं,
1: मजा तो आ रहा है। और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं,
1: बिल्कुल सही। मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है, इसे टकराना तुम यहाँ
0: ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की।
1: दोनों बनिए सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं, एक मेरी भी दोस्त है वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं मैं हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसे ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं।
0: ये हमेशा अपनी शायरी में ना मेरे को चपले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह।
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए,
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए,
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, देखो किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ,
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो,
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो,
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है, तुम मेरा चांद हो मेरी आंखों को रोशन करती हो, तुम मेरा चांद हो मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, ट्रू, क्या बात है, शानदार, शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो लिखना आ गया।
0: आपके फेवरेट शायर कोई जिनको आप याद, यू नो आज भी?
2: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था, एक मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट नहीं था, एक रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो,
0: वाह।
2: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
0: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बात है
2: जी,
0: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी कि फिर आपको मजा आ गया पढ़ने में, बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना हो ना, तब तक आप अपनी 100% नहीं दे पाओगे
2: जी।
0: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अब आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
2: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी।
0: अच्छा,
2: वो एंड में ही लिखा जाएगा, मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को। तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के, कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया, तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
2: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
2: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा, अभी लिखा है शुरू शुरू में, मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में यार। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा। काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
1: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
0: यार। मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा। पर अच्छा यार, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
2: देखो वही कहता है ना, जब कोई चला जाता है उसकी हिम्मत ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार।
0: लेकिन यार ऐसा तो नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना, फिर तो
2: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: ओके, मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
1: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ।
0: नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। खैर नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन, है ना। प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से अखिल भाई आपको बताऊंगा, आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे।
1: मतलब मैं क्या कोई बहुत पुराना मॉडल हूं?
0: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत, हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल, नो डाउट यार, सबको पता है। तो मतलब आजकल की जिंदगी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है।
1: वो
0: आजकल व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उसपे दो मिनट में वो वाली आ जाती है जो तुम्हें इंप्रेस करेगी, दो मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है। एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
2: अट्रैक्शन कह सकते हो, पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज़ें।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या अभी भी है, जिंदा
2: जिंदा है तभी तो हम जितना
0: है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक, और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
2: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
0: ठीक है,
2: उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को दे गया अपने, उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह।
2: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
0: वाह।
2: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
1: शुक्रिया
0: ओम जी। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में गाइस, आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आपने अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना, इसके बाद स्वागत अभिनंदन आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेरो शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं अखिल जी, आपको मजा आ रहा है या नहीं ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है और मैं तो यही कहूंगा मजे मजे में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। अखिल जी की शेरो शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए जी। ओम जी,
2: गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह,
2: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले तस्वीर लेकर तैयार बैठे।
1: कैसी तस्वीर, कैसी थी ओम जी, कुछ

0: बताएं तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ,
1: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता हो तो वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
0: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है,
1: आजकल मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी वहां से पता लगती है, इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पे ही भरोसा करें।
0: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते हैं ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूं।
1: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आप जैसे .com पे बिलीव करता हूँ, मैं शादी.com पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि सच बात तो यह है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊं तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहाँ जिसका काम बने वो बेस्ट है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
0: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
1: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
2: आगे का शेर भी है वैसे।
1: हाँ जी प्लीज बताएं।
2: पढ़ना चाहूंगा कि
1: श्योर,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
1: वाह,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
1: क्या बात है।
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं।
1: अरे
0: क्या बात है।
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं। जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा। उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा। मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं।
0: वाह।
2: ओम क्या फिर नहीं देखा, लौट कर उसका हसीन दामन। तेरे जैसे आशिक भी, क्या इतने खुददार बैठे हैं।
0: तो ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
1: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है।
0: और
1: मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हो ही जाएंगे हम तो यार।
0: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं,
1: डेफिनेटली,
0: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी हैं, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में, और जैसी वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
2: नहीं ऐसा जनरली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है, तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता।
1: That's very nice. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज करनी है ना, वो वाली चीज है। बट वो ये कि जिस चीज से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से, तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
0: मैं तो निकाल ही लेता हूं।
1: बस वही वाली बात है, जिस चीज से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर व शायरी होती है, जब आपको पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा कि तुम्हारे बाल सुंदर हैं, तुम्हारे गाल सुंदर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ यार, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ आप नहीं चाहते, तो कुछ अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो, सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो।
0: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंडिया में टिप्स ले रहे हैं, तो टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना
1: है। अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई,
2: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
1: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
2: मिल गया है वैसे।
1: अच्छा
0: ढूंढ लिया,
2: मिल भी गया।
1: क्या बात है, मेरा लक अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया,
2: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
1: हाँ जी,
2: तो बहुत सारे ख्याल आते हैं यार, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है। अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
1: वाह।
2: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहा हूँगा वो मोहब्बत पढ़ती रही।
1: क्या बात है।
2: मैं अपना नाम लिख रहा हूँगा वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं लकीरें लिखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है। वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पर, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। फिर वो अपने मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई। देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
1: अरे वाह,
2: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही। आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, तो सच में हुआ था।
1: अच्छा,
2: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही। और एक हम थॉट सोचते हैं यार ब्रेकअप हो गया तो उससे कहते भी हैं, तो उस बात पर गुस्सा हो जाती है, तो उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो उम, फुरकत की बात मत किया करो उम, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही। चुप करा देती है।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: ये तो है। ये
1: एक
0: तो
1: पल में प्यार हो रहा है, वहीं दूसरे पल में शिकायतें भी हो रही
0: है। अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगी।
1: ये बात तो आपने सही,
0: ओम जी जो है बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं। इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया, मुझे उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत।
0: अरे
1: फिल्म देखी थी, बहुत ही कमाल की।
0: आप मुझे पता चला आप ये वर्ड कहाँ से पकड़ लेते हो।
1: तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली पहली बार प्यार हुआ तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उससे रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप यहीं में जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं। हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में, ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं, लिख के इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं, और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं, लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं, ये मजे की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है।
0: अच्छा, फिल्टर है ये।
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज।
0: अच्छा ओके, बल कोई बात नहीं। अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है।
2: ये आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना। आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते राह चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे।
0: नहीं भाई, नगमा नहीं ढूंढना मुझे तरन्नुम ढूंढना है।
1: अरे
0: ढूंढनी है, सॉरी गड़बड़ हो गया है, सॉरी। बिल कोई बात नहीं, इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना। मेरा मेन मोटिव यही होता है, मेरा मेन मोटिव होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराएं और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें। बैक टू पॉइंट, अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं। जी ओम जी,
1: आपको कभी ऐसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल, मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है। हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है, और इसके लिए मैं जितना सोचूं जितना लिखूं वो कम है।
1: उससे तो होनी भी चाहिए। जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है, उसकी खुशी होती है।
0: करेक्ट।
1: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपने होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था, तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो, उस घड़ी को संभाल के रखूंगा। तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक, रुक जाता है वक्त, रुक जाता है वक्त,
2: ले लेंगे लाइन।
1: हाँ। रुक जाता है वक्त, जब भी तुम्हें देखा है मैंने, आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने।
0: वाह।
1: यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मोहब्बत का वादा, यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मांग भर के तुम्हें वक्त भी रोक दिया है मैंने।
2: क्या बात है।
1: कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूँ सामने, कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने। लगता है बहुत अमीर हो चुका हूँ मैं, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने। ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने।
0: वाह,
1: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने।
0: बहुत ही बढ़िया। तो कितनी बार कहा है आपने खुद से?
1: अभी तो
0: निकाल की बात तो पूछ ली जरा मैं। क्यों अखिल भाई,
2: नहीं,
0: ये शायरी है, ये सच्चे दिल की बात है या हमसे छुपाया जा रहा है?
1: अरे अभी तो नहीं है कोई।
0: अच्छा अच्छा, अभी मतलब सिर्फ जितना भी हमारी शेरो शायरी तक ही सीमित है।
1: हाँ, शेरो शायरी तक ही सीमित है, एक इमेजिनेशन होती है। हाँ।
0: बहुत जरूरी है।
1: तो
0: फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कोई बढ़िया सी तुमने लिखी है जो फ्यूचर में तुम्हारे आने वाली होगी, तो कैसी होगी उसके लिए बढ़िया सा?
1: उसके लिए अभी लिख नहीं पाया क्योंकि मैं अब उस चीज में इतना सोचता नहीं हूँ।
0: ओके,
1: डर लगता है उससे।
0: डर लगता है बहुत।
2: अच्छा जी, जो बीच बीच में शायरी में ओम जी आ जाते हैं हमारे, तो अगर उन ओम जी को कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर उनकी शायरी पढ़नी चाहे देखनी चाहे तो आप कैसे कांटेक्ट किया जाए उसमें?
1: मेरा एक पेज है दिल ए स्याही नाम से।
2: दिल है
1: दिल ए स्याही,
2: दिल ए स्याही, तो उस पेज को
1: फॉलो कर सकते हैं।
2: फॉलो कर सकते हैं तो आपको, तो आनंद जी तो अभी फॉलो कर लेंगे।
0: नहीं, हमने कर रखा है तभी वो यहाँ बैठे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते। सच्चाई यही है। क्यों ओम जी?
1: जी जी,
0: हम एक दूसरे की एक्टिविटी देखते रहते हैं। बहुत जरूरी, उससे पता चलता रहता है कि कौन कितना क्रिएटिव है।
2: एक दूसरे के नगमे जो है पकड़े जा रहे हैं।
0: करेक्ट, कह सकते हैं। आप नहीं डालते हो ना, इसलिए आपका नगमा पीछे रखा हुआ है। आप भी पोस्ट करना शुरू करो। अच्छा भैया, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो जैसे होता है ना कि कई बार हर इंसान को हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं होता है ना। आप जो शेरो शायरी कर रहे हो वो आपको पसंद है, वो आपका क्राइटेरिया है क्योंकि आप उस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पसंद नहीं होती, लेकिन वो फिर भी वाह वाह करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है?
1: ऐसा नहीं है, इन लोगों का भी दिल टूटा है।
0: अच्छा,
2: जो आपके साथ आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ ही चलते हैं
0: उनका भी दिल टूटा है।
2: उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि कभी जैसे ओम ने कुछ लिखा है या कुछ भी कोई बात तो कहीं क्लिक करता है आपके मन में या माइंड में? यार
0: थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो यार, अखिल भाई मैं पूछना चाहूंगा इनके बारे में, थोड़ा सा आप बोलो कुछ।
3: मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं ओम को।
0: अंतरिक्ष
3: जी,
0: जो आसमान में जाते हैं यहाँ पे, साइकिल भी जाते हैं शायद वहाँ पे अंतरिक्ष।
2: आज आप पूरा यूनिवर्स साथ में।
0: अरे वाह, मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर। हेलो, कैसे हो आप?
3: मैं
0: पूरे अंतरिक्ष को देख पा रहा हूँ आपके अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी नाइस। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आपको कैसे लग रहा है ये बताइए यहाँ के?

0: फिर तो जब गाने की, हम लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, भाई कुछ तो पकड़ के सुनाओ, कुछ तो बढ़िया गुनगुनाओ, मतलब क्या चीज है जो आप, मतलब आप पहले से गाते हैं या मतलब?
1: नहीं नहीं मैं मेरे को गाने का शौक बचपन से है। मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे,
0: ओह वाह,
1: और वो उन्होंने MTV में एक बारी शोज में भी गए हुए हैं, तो
0: ओह
1: वो जो उनके गाने का तरीका वो शायद मेरे अंदर इनहेरिटली आया है,
0: वेरी नाइस यार।
1: तो मैंने उनको देख के ही सीखा है जो सीखा है।
0: आप भी मुरादाबाद से हो?
1: जी मैं भी
0: आप कहाँ
1: मुरादाबाद
0: से हैं
1: से ही हूँ,
0: भैया?
1: मैं सिविल लाइन से।
0: सिविल लाइन्स मुरादाबाद। अच्छा,
1: जी
0: अभी प्रोफेशनली क्या चल रहा है? स्टडी कंप्लीट हो गई?
1: जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है BCA से,
0: ओके,
1: और अभी मैं फिलहाल एक बिजनेस कर रहा
0: ओ
1: हूँ, इवेंट
0: नाइस,
1: मैनेजमेंट का।
0: क्या बात है, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। इवेंट मैनेजमेंट,
1: जी
0: लोगों की शादियों को अच्छे से मैनेज करना या फिर सारी इवेंट मैनेजमेंट?
1: सारी ही इवेंट मैनेजमेंट, मोस्टली शादियां, मेरे
0: ओके,
1: को शादियां करवाना ज्यादा अच्छा
0: क्या बात है। तो अपनी हो गई अभी या
1: लगता
0: नहीं?
1: है। नहीं, मेरी कहाँ।
0: अरे वाह, मतलब दूसरों की शादियों का बैंड बजाओ,
2: दोनों
0: अपनी
2: दोनों
0: को थोड़ा संभाल के
2: दोनों
0: रखो।
2: दोस्तों ने बिल्कुल एकदम सही दोस्ती पकड़ी एक
0: नाइस
2: दूसरे
0: यार,
2: की।
0: मतलब वेरी नाइस। और आप
2: बोले
0: लोग साथ में कब से हो, यू नो ये
1: हम लोग
0: पूछ।
1: स्कूल से साथ हैं।
0: ऑल राइट, अच्छा,
1: हम लोग
0: कभी मनमुटाव नहीं हुआ आप दोनों का भाई?
1: नहीं, लड़ाइयाँ हुई है, बहुत
0: अच्छा,
1: लड़ाइयाँ हुई है,
0: ओके,
1: बात भी नहीं हुई है बीच में।
0: तो फिर कौन एक दूसरे को यू नो सबसे पहले
2: कार्ड
0: कन्विंस?
2: देता था कार्ड।
0: नहीं, कन्विंस भी होता है ना कि भाई मैं ही चला जाता हूँ, चल तू मत बोल भाई।
1: हमारा ना एक्चुअली 4-5 जनों का ग्रुप है,
0: ऑलराइट,
1: और
0: वो देखे हैं मैंने 4-5 जने।
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: आपने
0: हाँ मैं
1: सबसे मिल
0: देखा हूँ
1: चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोगों का ना क्या होता है, अगर आप मान लो किसी एक दो के बीच में लड़ाई हो गई, तो 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, बट हमारा ना एक शाम में मिलने का स्पॉट है, और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब मान लीजिए मेरी और इसकी लड़ाई हो गई उनकी, और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्रुप पे मैसेज आएगा कि भाई हमें यहाँ मिलना है, इस टाइम पे सारे आ जाओ। अब उस टाइम पे ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर हमारी लड़ाई हो रखी है तो हम उस ग्रुप से मिलने नहीं जाएंगे, मिलने आ जाएंगे। अब हम वहां मिले तो ऐसा लगेगा कि जैसे कभी हमारी लड़ाई ही नहीं हुई, उसकी बात ही नहीं होगी, जैसे हम हमेशा मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। तो कभी हमें एक दूसरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग समझ जाते कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा उस इमोशन में था, मैं इमोशन में था, वो समझ गए, तभी शायद हमारी दोस्ती इतनी कह रही है कि हम एक दूसरे को बिना बोले भी समझ
0: That's
1: जाते
0: true,
1: हैं।
0: yeah.
2: भाई साहब, अभी जो आजकल हम जजेस को ढूंढ रहे हैं या जितने भी हम वकीलों को ढूंढ रहे हैं ना जो केस सॉल्व करवा दें, ऐसे लोगों की जरूरत है हमें, जो मनी मन में केस सॉल्व कर दें, कहानी खत्म, भाई तू भी मैटर सॉल्व मिले।
0: नहीं मतलब ये बात तो यार बहुत अच्छी बोली, और मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2026 में ऐसे स्पेशल दोस्त बहुत कम हैं जो एक दूसरे की यू नो बॉन्ड को इतना संभाल के और समझ के रख रहे हैं यू नो। और आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ग्रुप्स ही नहीं बचे हैं, सिर्फ आजकल वो खाने खिलाने वाले ग्रुप्स बने हुए हैं, शाम को मिलते हैं, मैंने तेरा खाया, तूने मेरा खाया, उसके बाद टाटा बाय बाय,
2: तू कौन मैं कौन,
0: खत्म, वो वाला सीन है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो यू नो इस चीज को बहुत संभाल के रखते हैं।
2: अरे ये अभी मैं मतलब ये बात से मुझे याद आया कि इसमें भी एक वो होता है, वो रहता है लॉजिक कि जैसे खाना खा लिया तो हाथ सभी के जाएंगे पर्स के पास,
0: पैसे
2: मगर
0: किसी
2: मगर पैसे किसके
0: किसी
2: पहले निकल
0: रहे,
2: वो एक दूसरे को देखते रहते हैं यार,
1: सबके साथ
2: पिछली बार तो मैंने खर्च किया था, इस बार तू जरा पहले निकाल,
0: करेक्ट,
2: ये
0: अच्छा
2: भी
0: तो
2: इशारों में समझ जाते हैं आप सब आपस में। तो ये सबसे मेन बात है, कुछ और समझो ना समझो, ये चीजें आपस में समझनी चाहिए।
0: अंतरिक्ष भाई से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा दोस्ती की बातचीत चलिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा गाना लगा रहा हूँ फ्रेंडशिप के ऊपर, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको कोई पुराना दोस्त है जो आपको याद नहीं कर रहा है, तो आज आप उसे याद करो, व्हाट्सएप करो या कॉल करो, किसी भी तरीके से उस तक पहुंच जाओ, हो सकता है वो भी आपका वेट कर रहा हो। क्यों क्यों अखिल भाई, कई बार होता है ना सामने वाला हमारा वेट कर रहा होता है और हम इस चक्कर में बैठे होते हैं कि वो हमें फोन करे, और इसी चक्कर में क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यार आप ही शुरुआत कर लो, क्या दिक्कत है, और फिलहाल ये आपके दोस्त के लिए मेरी तरफ से।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो लेकर हाजिर है गीत आपके नाम से। देखिए, संडे की शाम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बाहर का नज़ारे की अगर बात करें तो बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ हर हर महादेव ही जय जयकार गूंज रही है। लाइक इतना पवित्र महीना भी है और कल सावन का दूसरा सोमवार भी है। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल शो में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको कॉल करना होगा। तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजी खुशी का नमस्कार। मुझे पता है हमारे जो श्रोता है समय कुछ तो अंधविकार में है और कुछ अभी किचन में है, खाना बना रही है, तो कुछ अभी बाहर टहल रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, वॉक करना चाहिए एंड अच्छा लगता है जब इवनिंग में लंच डिनर करने के बाद हम थोड़ा वॉक करते हैं, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एवरीवन, मैं सुनवाती हूँ आपको एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करते हैं शो की शुरुआत एंड आप भी कॉल कीजिएगा मुझे।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना ही प्यारा सा ट्रैक तलविंदर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, पल पल जीना मोहाल। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका निम्न सौदा मोहम्मद इशरत आपसे बात कर रहा हूं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं। आपका इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से। टाइम भी मैम काफी हो गया है, तो 9:15 आ चुके।
0: हाँ जी, 15 मिनट होने वाले हैं। जी बताइएगा।
1: और मैम खाना हो गया आपका?
0: जी नहीं सो।
1: अच्छा मैम, और मैम मौसम कैसा मुरादाबाद का?
0: मौसम बहुत ही प्यारा है, हवाएं चल रही हैं बाहर ठंडी ठंडी।
1: जी मैम ऐसा लगता है ऐसे बारिश होगी थोड़ी।
0: हाँ जी, बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है, बारिश होगी सब।
1: जी मैम, मैम आप आइए हमारी तरफ रामबन में, काफी दिनों से बुला रहे हो मैम आपको।
0: जी जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स कभी आना हुआ तो जरूर आएंगे। एंड
1: स्वागत आपका।
0: जी थैंक यू। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: मैम आज दो गाने हैं। पहली मूवी है खुददार गोविंदा की और करिश्मा कपूर की, गाने के बोले तुम मानो या ना मानो। और दूसरा गाना है, मूवी का नाम है राज, गाने के बोले जो भी कसमें खाई थी हमने। मैम इन दोनों में से जो सा सॉन्ग आपको पसंद आए वो प्ले कर देना।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं। आप भी कॉल लगाइए, शायद आपका भी कॉल लग जाए। देखिए कुछ भी हो सकता है, लक आजमाना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें करते हैं तब सफलता मिलती है। अब लक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना ऐसे, है ना? तो चलिए जल्दी से कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: बिल्कुल दोस्तों, मुझे तो याद है। क्या आपको भी याद है हमारे एफएम मुरादाबाद 89.6 का नंबर? अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। 9837896896 शो का नाम है गीत आपके नाम से, और राज मूवी का भी आपने ट्रैक सुना अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, खूबसूरत गाना। और अभी हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो हेलो।
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं अनवर बिहारी आपसे मुखातिब हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: सब मजे हैं मैडम, और आपसे बात करके हमारे लिए अच्छे हो गए। गालिब का वो शेर आपने जरूर सुना होगा, उनके देखे से जो आ जाती है मुखड़ी की चमक,
0: वाह वाह,
1: वो समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम है। बस यही याद हमारा, हम आपसे बात करते हैं और ख्याल रहिए आपकी।
0: बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी, और बताइएगा।
1: और खास तौर से आज के दिन का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि रात के 9 बजे और आपको फोन लगाऊं।
0: अरे वाह, तो कैसा लगता है सर हमारे एफएम मुरादाबाद की कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, प्लीज बताइएगा।
1: बहुत अच्छा लगता है मैडम, और रेडियो सुनता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। जब जगह जगह रेडियो का ही दौर था, हर घर में रेडियो सकता था, दुकानों में, बाजारों में, माए की दुकानों में। अब तो बस पुरानी यादें बाकी रह गई हैं, अब तो दूसरी मैं देखता हूँ ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, तो मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है बहुत शिद्दत के साथ। पूछते अब और कुछ नहीं चाहिए मेरी उम्र रवा, पूछते अब और कुछ नहीं चाहिए मेरी उम्र रवा, जो मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया लाते, नया मौसम मेरी आंखों की बिनाई को तब्दील नहीं, मेरी आंखों को फिर वही ख्वाब पुराना लाते।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी।
1: और बचपन के ताल्लुक से एक शेर और हाजिर करता हूँ।
0: जी जी जी,
1: नज़म है, नज़म के चंद अशआर है। छोटा सा बच्चा था मैं दिल्ली में, एक मेले में पहुंचा हूँ, मक्का हुआ, लौट आया दिल में लिए सैकड़ों का इश्क, मगर पास कैसा था। आज मेला लगा है उसी शाम से, आज चाहूँ तो सारा जहाँ मुझे, ना उम्मीदी के दिल में अब हसर था, एक नन्ना सा अल्लाह सा बच्चा था।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है।
1: सर्कस आए चले भी जाए देख न पाए बच्चे, जब तो इन हालात में डर लगता है मुझको कि धीरे पर से टूटी दुनिया उठा न लाए बच्चे।
0: क्या बात है, अमेजिंग सर, सुपर।
1: शायरों को मस्त कर देता है तारीख शेर अमीर, सौ बोतलों का नशा ही वाह वाह।
0: बड़ी प्यारी सी लाइनें हैं आपकी, और बताएगा हरियाणा का मौसम कैसा है सर?
1: मौसम तो बड़ा सुहाना है, जिसकी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं
0: जी।
1: और मुझे इस वक्त डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर भी याद आ रहा है।
0: जी जी जी, इरशाद सर।
1: मस्त हवा के झोंके जिस चमन से आ रहे हैं, ये मस्त हवा के झोंके जिस चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ को छू के आते से कुछ और बात होती, ये फसान है मोहब्बत पर जुबान दी जाना क्या है, अगर तुम इसे सुनाते से कुछ और बात।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल ही कर दिया आपने तो, इतनी प्यारी प्यारी सी लाइनें।
1: रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, जिसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से जो इबादत में खलल पड़ता है।
0: सुपर, अमेजिंग सर, बताइएगा आज की शाम आप क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: आज मुझे आप सुना ले फिल्म अनमोल भाई का नगमा है आवाज नूर जहां की, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी जाग लगा के, हम सोच रहे थे कभी दिल से मिलेंगे, जीवन में मोहब्बत के कभी फूल खिलेंगे, पर क्या ये खबर के तुमको न आएगी दया, रख दोगे किसी दिन मेरी दुनिया को लुटा के, अरमानों की नगरी में मेरी लगा के।
0: सर माफी चाहेंगे, ये ट्रैक तो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, बट हम कोई दूसरा गाना प्ले कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है?
1: चलिए मैं अपने जी दोस्तों का नाम ले लूं।
0: नहीं सर, नाम तो नहीं ले पाएंगे आप, उसके लिए माफी चाहेंगे हम आपसे। एंड आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और सुनवाते एक प्यारा सा गीत, आप इंजॉय कीजिएगा। जी मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं। बस आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइएगा। अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ और ये गाना बहुत प्यारा है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, आप एंजॉय कीजिएगा।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आप सुन रहे हैं गीत आपके नाम से प्रोग्राम, और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और एवरीवन, हुआ है अभी यहाँ पर 9:33। और साथियों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? कि हर हाल में मुस्कुराना, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे कभी हार नहीं मानते। तो आप भी इस समय गुमसुम से बैठे हो तो थोड़ा मुस्कुरा लीजिएगा। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हाँ जी, मैं मोहम्मद उस्मान
0: जी
1: जी
0: जी
1: बोल रहे हैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, ओके सर, बिल्कुल सुनवा देते हैं। आपने अरे वाह सर, भी बड़ी खूबसूरत सी लाइनें प्रस्तुत कर रहे थे। एंड सुनवाते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक, खुदा गवाह का। हम बस आते हैं प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है गीत आपके नाम से, और आप भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको कॉल लगाना होगा। कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या बस ऐसे ही आज मन में आ रहा है कि चलो आज ये वाला ट्रैक सुन लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसाइड करके रखते हैं, है ना, और कभी कभी रैंडमली हम कॉल लगाते हैं। मन में ख्याल आता है कि चलो आज कॉल लगा लेते हैं मैम को, और कोई भी गाना जो आपके जहन में आता है तो आप उसको प्ले करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉल तो करना ही होगा। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो मुरादाबाद।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद रेहान बात कर
0: रहा। जी जी बताएगा रेहान जी, कैसे हैं आप?
1: हाल चाल सब बढ़िया मैम जी, आप पे बात हो जाती है अच्छा हो जाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए हमेशा, बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आई एम गुड, आप बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है और अच्छा लगा।
0: जी जी जी, अभी आप बाइक पे हैं क्या?
1: जी मैम बाइक पे है, और आप हमारी सुन रहे थे, मैंने खुद ही मैम को कॉल लगाए।
0: ओके ओके, तो सर केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, बाइक चलाइए आप। ओके
1: जी मैम,
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा गाना, और आपको भी कॉल लगाना है ना, तो जल्दी से लगाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अब तो मैंने इजीली और आराम से बताया ना, तो अब जल्दी से कॉल कीजिएगा, और फिलहाल अभी सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक। मैं वापस आती हूँ बस अभी।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: हेलो।
1: हेलो, हाय दी।
0: हाँ जी, क्या हाल है बताइए अपने।
1: मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो।
0: मैं भी ठीक हूँ, अपना नाम तो बता दीजिएगा।
1: जी, मैं कभी जनपुर इस्लाम मुरादाबाद से आपके दोस्त अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी बताइए अफरोज, कैसे हैं आपकी फैमिली में सब लोग।
1: मेरी फैमिली में बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं।
0: हाँ जी, ऑल गुड। बताइएगा क्या कर रहे थे इस वक्त, बाहर का वेदर कैसा है आपकी साइड का।
1: बाहर तो मतलब अभी चांद तारे निकले हुए हैं, यहाँ पे मतलब बादल छाया हुआ नहीं है। हाँ,
0: अच्छा, ओके।
1: और गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है।
0: ओहो, पर क्या करना चाहिए, हवा बंद हो गई है।
1: जी, हवा भी नहीं चल रही है
0: लेकिन जब मैं स्टूडियो आ रही थी तब तो बड़ी खूबसूरत हवाएं चल रही थी यार।
1: अभी तो, मतलब ऐसा होता है ना हर जगह का, ये यहाँ से मतलब काफी दूर हो तुम।
0: हाँ जी, हम दूर हैं और चेंज होता रहता है वेदर।
1: हाँ, होता रहता है, क्या पता अभी मतलब थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए यहाँ पे भी।
0: हाँ, शायद बारिश भी हो जाए, कुछ नहीं कह
1: हाँ,
0: सकते। जी बताइएगा, आज की शाम आप क्या सुनना चाहेंगे फ्रोज।
1: दीदी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, तुम हमसे प्यार कर लो हम तुमसे प्यार कर ले। हाँ
0: वो तो करते हैं आप, नो डाउट। एफएम मुरादाबाद से इतना प्यार करते हो, जब भी आपको समय मिलता है आप हर शो में पार्टिसिपेट करते ही हैं।
1: दीदी बिल्कुल, हम बहुत प्यार करते हैं दीदी, हमें बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि पहले 15 साल पहले हम रामपुर का रेडियो सुनते थे, तो हम वहाँ पे कॉल भी करते थे लेकिन हमारी कॉल कभी रिसीव ही नहीं हुई। यहाँ
0: अच्छा, और यहाँ
1: पे
0: पर
1: तो बस लगाने की देर होती है, बस यहाँ पे तो तुरंत हमारी कॉल रिसीव होती है। और पता है जब से मुरादाबाद में रेडियो चालू हुआ है हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत
0: हाँ,
1: अच्छा
0: वो
1: लगता है।
0: खुशी झलकती है आपकी बातों में,
1: हाँ
0: आपके चेहरे पर।
1: हाँ दी,
0: जी
1: और शो बहुत अच्छा करते हैं सभी आते हैं, बहुत अच्छे से शो करते हैं दी, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: शुक्रिया आपका। बताइएगा आप आज की शामी प्यारा से गाना किन के नाम करना चाहती हैं।
1: दीदी मैं बस तीन नाम ले सकती हूँ,
0: हाँ हाँ बिल्कुल, शॉप।
1: जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइवा, और मेरी सिस्टर नजमा भी, और रामपुर से सबनम भी।
0: ठीक है, हैप्पी।
1: जी बिल्कुल, और दी मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ।
0: जी इरशाद।
1: न जाने कैसी उलझन है सुकून होने नहीं देती, न जाने कैसी उलझन है सुकून होने नहीं देती, तुम्हारी याद की शिद्दत मुझे सोने नहीं देती। बहुत नजदीक होकर भी ये कैसी दूरियां तुझसे, बहुत नजदीक होकर भी ये कैसी दूरियां तुझसे, ये मेरी कम नसीबी है तेरा होने नहीं देती। मेरी मजबूरियां है क्या मेरी आंखों में देखे वो, मेरी मजबूरियां है क्या मेरी आंखों में देखे वो, मेरी आंखों में आंसू है अना रोने नहीं देती, मेरी आंखों में आंसू है अना रोने नहीं देती।
0: आपने शायरी तो बहुत प्यारी की है लेकिन आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो गई थी, फोन दूर रख लिया था।
1: नहीं थी फोन तो मतलब मेरे पास में ही है, हाथ में रख।
0: अभी अभी आवाज़ बहुत अच्छी आई है आपकी, कड़क। एंड पहले आप स्लो स्लो बोल रहे थे, शायद आप जो शायरी बोल रहे थे वो एकदम फील कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था, है ना।
1: जी, हाँ
0: हाँ
1: ऐसा ही समझ लो।
0: ऐसा समझ लो, नहीं ऐसा था।
1: हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शायरी बहुत अच्छी है। थैंक
0: हाँ जी बिल्कुल, और आप भी बहुत प्यारे हैं। चलिए गाना एंजॉय कीजिएगा, शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट
1: यू,
0: वेलकम, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये गाना, और बस मैं आती हूँ वापस इस खूबसूरत ट्रैक के उस पर।

0: तो दोस्तों अभी आपने ये कार्यक्रम एंजॉय किया, कार्यक्रम का नाम तो बता दूं मैं आपको, पता है ना? जी हाँ, गीत आपके नाम से, और मैं थी आपकी होस्ट आरजे खुशी। अभी फिलहाल मुझे दीजिए घर जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी सेम टाइम सेम जगह टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए। सेम टाइम सेम जगह क्यों नहीं मिलेंगे, सुबह 10 बजे तो मिलेंगे ना स्टूडियो। देखिए सेम टाइम से पहले मैं आ जाती हूँ, ओके? लेकिन आनंद सर जो है वो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ जी,
1: कल 10 बजे।
0: हाँ श्योर,
1: टाइमिंग चेंज हो जाएगी।
0: नहीं नहीं, देखो मैं 10 बजे से पहले अपने स्टूडियो पहुँच चुकी होती हूँ।
1: मेरा कहने का मतलब ये है कि रात को नहीं आओगे तुम।
0: अच्छा रात में, ओके।
1: सेम टाइम सेम जगह,
0: सेम जगह मतलब टुमारो मॉर्निंग तो मिल सकते हैं। टुमारो मॉर्निंग हम सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं ना दोस्तों। तो चलिए, ये रीना जी मेरे साथ में है। आप सोच रहे होंगे कि लड़की किस लड़की से बात कर रही है, तो इधर रीना जी भी हैं मेरे साथ बैठी हुई हैं, जो कि बड़ा मुस्कुरा रही हैं, और इनको मेरे बिना चैन नहीं मिलता है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, संडे इनके लिए इंजॉय करने के लिए होता है, लेकिन बेचारी अकेली रहती हैं तो उनका दिल नहीं लगता है, तो चाहती हैं कि चलो खुशी के साथ वक्त बिताते हैं। मैंने कहा चलो भाई फिर मस्ती करते हैं मिलकर। तो अभी हम जाने वाले हैं कुछ बाहर खाने पीने के लिए। नहीं यार, कुछ तो खा सकते हैं ना, मतलब फ्रूट्स वगैरह तो ले सकते हैं, नो डाउट। अगर वैसा जंक फूड के लिए बातें कर रही हूँ,
1: पूजा कर रही हूँ, पेट पूजा कर रही
0: हूँ। फ्रूट्स खाना तो अच्छा है, पूरे दिन अगर कुछ नहीं खा रहे तो फ्रूट्स खा सकते हैं। तो बताओ, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है एंड हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुन पा रहे हैं आपको।
1: चलो श्रोताओ, गुड नाइट।
0: तो टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, और आप सभी को एडवांस में सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी तैयारियों में लग चुके हैं
1: और शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं।
0: हाँ अरे वाह, क्या बात है, बहुत एडवांस हो गए रीना जी। हाँ तो चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और अपना भी, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, प्यारे प्यारे सपने देखिए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: कर यार, नाटक ना कर, नाच ना यार, नाच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नाचना, भैन की सगाई च भाईनू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।